0: तो सच्चा साहिब से दसवा दियो जिन कीती सो पार पिया कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर महला दूजा
1: जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्रे शब्दं शूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जेको जाने पे

कुजन्ति सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वडहंस महला पहला संत एक ओंकार

आप जी रोजाना इस स्थान तो अमृतमई बाणी की लड़ीवार शब्द विचार का लाहा प्राप्त करते आ रहे हो। वडहंस राग

0: सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ।
1: प्रभु के सिमरन गर्भ नाम बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम नसे।
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे।
1: प्रभु सिमरत गज विघ्न न लागे, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे।
0: प्रभु के सिमरन भव न व्यापे, प्रभु के सिमरन

0: प्रभु को सिमरहिं से सुखवासी, प्रभु को सिमरहिं सदा अबनासी।
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगर वाला।
0: प्रभु को सिमरहिं से पर

0: कल हो वे अति भारी हर को नाम की माहे उदारी
1: अनुकपने चरण करतने तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख गनेरे
1: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जप तो है सुखिया
0: करोरी बंद न पर हर का नाम जपत निस्तर
1: अनुक माया रंग तिख न बजावे हर का नाम जपते अगावे
0: मार्ग जात अकेला तै हर नाम संगो
1: ऐसा राम सदा ये नानक गुरमुख प्रमुख सपाइये
0: नहीं कोट लक बाही नाम जपत तह पार पराई
1: अनक बिगन जे आय सिंगारे हर का नाम तत्काल धारे
0: जोन जन में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम
1: मैं लामल कबू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे
0: ऐसा नाम जपू मन रंग नान

0: हर के नाम जन को त्रपत पुगत
1: का नाम जनता रूप रंग हर नाम जपत कब पर न भंग
0: हर का नाम जन की बड़याई हर के नाम जन शुभ पाई
1: का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाही वियोग
0: दाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा
1: हर जन के माल खजीना हर धन जन को आ प्रभ दीना
0: हर जन के ओर सुतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते
0: आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रकट नहीं छपे
1: हर की भगत मुकत बहो करे।

0: पितृ बसे अनंत के लंबाया रंग रसे
1: कर्माने मने प्रतीत काल न आवे मुड़े जी
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह चूट बकार महालोभ त्रोह
1: जगत बिहाने कई जन्म नानक।

0: ठाकुर को रख मन माए,
1: जे प्रसाद संत संतन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावे,
0: जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर,
1: जे प्रसाद के संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना,
0: प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यावन जो,
1: जे प्रसाद पाठ कंबर हंडावे तिसे त्यागत अवर लुभावे,
0: सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी,
1: जे प्रसाद ने सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने,
0: प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म,
1: प्रभ जी जब दरगा मान पावे नान पास ती कर जावे,
0: प्रसाद आरो कंचन दे ही लीवला हो तिस नाम से,
1: जे प्रसाद रौला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत,
0: प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता,
1: जे प्रसाद को न पहुचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे,
0: प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे,
1: ये प्रसाद भूखण पैरी जे मन ते सिमरत क्यों वालस की जय,
0: प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी मन किस प्रभु को कबु न बिसारे,
1: ये प्रसाद बा बिलक थना राख रो प्रभु अपने मना,
0: तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सती सहजे
1: आए, जो एक लखे यावा नाना तेरी रखे,
0: प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान,
1: ये प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी,
0: प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा,
1: ये प्रसाद तेरी निकी जा सो प्रभु सिमर सदा दिन रा,
0: ये प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे,
1: ये प्रसाद सुने करना जे प्रसाद देखे बिस्मा,
0: प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना,
1: जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले,
0: प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे,
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो,
0: प्रसाद तू प्रगट संसार किस प्रभु को मूल न मनो विसार,
1: जे प्रसाद तेरा प्रताप जी मन मूल तू ताको जा,
0: प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे,
1: जे प्रसाद तू पावे साथ जी मन मेरे तू ता स्योरा,
0: प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए,
1: आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाई सो हर गुण गाओ,
0: कृपा ते होए परगास प्रभु दया ते कमल बिगा,
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते

0: पलायन सत्संग अमृत गुण गायन
1: साधक संग सर्वथान गमनान साधक संग सफल जन्म
0: साधक संग नहीं कछु काल दर्शन भेटत होत निहाल
1: साधक संग लोकत हरे साधक संग नरक पर हरे
0: साधक संग

0: साध के संग सनोहर नाओ सा संहर के गुण गाओ
1: साध के संग मनते विसर साध संसार पर निस्तर
0: साध के संग लगे परम मीठा साधु के संग कट कट डीठा
1: साध

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में है कमल अले।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सो।
0: ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागत तुल पमार।
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जे एक जो बस

0: जैसे धरु पर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाय भगवान।
0: ज्ञानी उच्चते ऊंचा मन अपना है सबते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रव्याप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा न पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
0: ब्रह्म

0: करन न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा।
1: प्रसाद बिखिया पर हरे मन की वासना मन के तरे।
0: इंद्री जित पाए दुख दे रह, नान कोट मदे को ऐसा परस। कर्म करत हो वे न कर्म, तिस बैस नु का निर्मल धर्म।
1: इच्छा नहीं बाचा केवल भगत।

0: बस प्रेत मुगत पात्र कोतारी
1: धर्म रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: काहूं जुगत किते ना पाइए धर्म नाना तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास किसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदी आया दाद संतन पाई तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान सो दास दल के परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे।

0: कई कोट पंखी सर्प हो पाए, कई कोट पात्र बृख निभ जाए,
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट ससियर सू नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
0: कई कोट राज तम सत, कई कोट वेद प्राण सिमरतर सस्त,
1: रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जन,
0: कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गरीब मेर स्वरण थीवे,
1: कई कोट जग किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा,
0: सब इन्हेर सबूते दूर नान काबल त्रया प्रभु,
1: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट

0: पारब्रह्म लहन
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभु बिनास
0: कई कोट मांगे सत्संग पारब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको है आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन
0: कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मण

0: जो बनवंत सो होवत बिस्टक का जन
1: आपस कहो करम वंत कहा वह जन्म मरा गो जोन भरमावे
0: तन पुंका जो करेग मान सो मूर्ख अंधा गया
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक या मुकत आगे सुपा
0: तन मंता हो कर गुरबावे ते समान कर संग न जावे
1: तो लश्कर मान ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए बिना
0: सत्य आप जन बलवंत फिर में हो जाए पसमंत
1: न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरे
0: गुर प्रसाद जाका मिटे मान सोजन नान अंतर के परवान
1: कोट कर्म करे हो धारे श्रम पावे सगले बिरतारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर फिर अवतार
1: अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे
0: आप को जो पला कहावे से पलाई निकट आवे
1: जा का मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लोग जाने मुझ दिक्कत होए तब को सुखनाई कोई
1: जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी में तब लगने चलनाई चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे अनक भोग दिखिया के करे न तृतावे खब खम मरे
1: ना संतोप नहीं को राजा सुपन मनोरथ बिरथे सब
0: नाम रंग सर्व सुख होए बट पाकी किसे प्राप्त

0: हीरा समाए
1: उपदेशा समझे आप आपे रचिया सब कैसा
0: आप किनो अपन विस्तार सब जिसका करने हा
1: बिन कहूँ किस होए थान।

0: कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत हुए मलीन, संत के दुखन शोभा तेहीन,
1: संत के अते को रखे न कोई, संत के दुखन थान ब्रष्ट हुए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे नानक संसंग निंदक पीत रे,
1: संत के दुखन ते मुख भवे, संतन के दुखन काग जो लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन तक

0: संत की निंदा दुख में दुख नान संत पावे तौस का भी होए मोह
1: संत का लोकी सदा पवित्र संत का दोखी किसै कानी वित
0: संत के दोखी को डान लागे संत के दोखी को सब त्यागे
1: संत का दोखी महा अहंकारी संत का दोखी सदा बेकारी
0: संत का दोखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते टरे
1: संत के दोखी को नाही ताओ नानक संत पावे ताले मिलाए
0: संत का दोखी यद बीत टूटे संत का दोखी किते काज ना पहुँचे
1: संत के दोखी को ध्यान भरमाइए संत का दोखी उज्जड़ पाइए
0: संत का दोखी अंतर ते थोथा जो सास बिना

0: संत का दुखी भूखा नी राजे जो पावक इंदन नी त्रापे
1: संत का दुखी छुटा अकेला जो बुआर तिल खेत माही दुहेला
0: संत का दुखी धर्म तेरा संत का दुखी सद मिथ्या कै संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का

0: जिसका कंबूसक होए जिसका नवरा कंठ रोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोई
0: उस मन में कंठकार कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जी
0: ननो प्रख ठाकुर करं सा संग मिन से सब संग
1: चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा दुर्गे नानक उजल मथा
1: जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाए
0: राम नाम जो करे विचार से तन मंत्र गणी संसार
1: मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानू

0: संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत
1: अंधन कीर्तन केल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण
0: पर जी जन की आसा तिसकी कटी है जम की
1: पर रम की जिस मन भूख नान तिसे न लागे दुख
0: जिसको हर ब्राह्मण चित आवे सो सन सोहेला नहीं डुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किस ते डरे
0: जैसा तैसा दृष्टा है अपने कारज में आप
1: सोद सोद सोद सीजिया गुर प्रसाद तस्सा बुझिया
0: तब सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई अस्तु
1: न के जन्मे न किछ मरे अपन जलते आप ही करे
0: जामन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्री
1: अपे आप सगल में आप अनक जुगे रज था पुथा।

0: सर्व जिया आपे प्रतपा
1: सगल की चिंता जिस मन माए तिस्ते बिपता कोई नाए
0: रे मन मेरे सदा हर जाप अब नासी प्रवे आपे आप
1: आपन किया।

0: जब जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
0: जाके मन गुर की प्रति के जन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत भगत सुनिए ते रोए जाके हृदय एको होए
0: सच करनी सत्ता की दैत साची दै सत मुख दैत
1: साची दि साचा आकार सच वर्ति साचा

0: जिससे प्रेरणाए किच कोई श्रम डरंतरे को सोई
1: आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गही सुजान
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शन
1: साध तेरे की चरनी पाओ नानक कै मने अनराव
0: मनसा पूर्ण सन्ना जोग जो कृपाया सोई हो
1: हरण भरण जाका नेत्र फोर किसका मंत्र न जाने हो
0: अनदरो मंगल सजा के स्रोत हो सुनिय कर्ता के
1: राज में राज जोग में जोगी तप में तपिस्तर ग्रह

0: सच अष्टवदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदा
1: दर्शन सत सत खनहार नाम सत सद्या मनार
0: आप सत सस्वधारी आपे गुण आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभ वक्ता सूरत सत सत जस सुनता
0: बुजनहार को सस होए नान सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन कराम तिन मूल पछानिया
0: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटा
1: रहते निर्भय होए बसाना जिसते उपजिया तिस माहे समाना
0: बस्त मायले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई
1: बुझे बुझन

0: होए बसे सगल ब्याज मन ते खै
1: जिसका सातन कृपा तारी सा संग जब नाम मुरारी
0: पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस
1: नरगुण सरगुण भी होई कलाधार जिन सगली मोही
0: अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे
1: हर बिंदु जानाई कोई सर्व निरंतर एको सोई
0: पोत पोत रवे

0: अपनी भक्ति लाए अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम
0: साजन की मंगो धूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर्ण
1: सदा सदा प्रभ के गुण गाऊ साथ साथ प्रभ तुम्हें दिया
0: चन कमसो लागे पीर भगत करो प्रभ की नतनी
1: एक ओट एको आधार नानक मागे नाम प्रभ सार
0: प्रभ की दिष्ट मास को होए अर्स पावे बिल्ला कोए
1: जाके ऐसे जन तृप्ता ने पूरन पुरक नहीं डोला
0: सुपर ब्रे प्रेम रस रंग जे चाओ साथ के संग
1: आन सब त्याग अंतर प्रगाश अंतिम लिवला
0: बड़ भागी जप्या प्रसोए नानक नाम तिस होए
1: की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभु होयो दयाल सेवक किन्नो सदा

0: भक्ति नाम समाए।
1: सुखों बिसरे जे काल न बने, सुखो बिसरे जे किया जान।
0: बिसरे जिन सब किछ दिया, सुखों बिसरे जे जीवन जिया।
1: सुखों बिसरे जे अगन में रखे, गुर प्रसाद को बिल्ला लखे।
0: सुखों बिसरे जे बिकते काटा, जन्म जन्म का टूटा गन।
1: गुर पूरे तहे बजाया, प्रभु नान जन ध्याया।
0: संत करो एका मानते आज जपो हर नाम।
1: सिमर सिमर सिमर सुख पाओ।

0: हस्तपदि दबय कार कछना दृष्टि तापा पंतव कैति होता
1: जब दारी अपन सुन समात बैर विरोध की संकमात
0: जब कबन चहना जाप उत्तम हर्क सो कोक से व्याप्त
1: जब अपन आपा पार ब्रह्म तम मोह का की सोवत भरम
0: अपन खिरिया व्रति जानान करने आर न दूजा
1: जब हो अत्रव के वधनी तब बंद मुकत को किसको गनी
0: जब के रगम पार तम नरक सुरुख को कौन का
1: जब निर्गुण

0: अब नासी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को का विनाशन
1: पूरण करता प्रसोए तब जन की त्रास कहो किस होए
0: जब गति गोचर प्रभ इक्का तब चित्र गुभ के पूछे लेखा
1: जब नाथ निरंजन गोचर राजे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: अपने हावा पीत्र जा नानक अपन रूप पापी प्रजा
1: जनी मल पुरक पुरक

0: वृंदावन को नरक को स्वर्ग बंछावत
1: और धर्मय जंजाल होमे मम परम पैपा
0: दुख शोक मान अपमान अनेक प्रकार की हो बख्यान
1: अपन खेल आप कर दिखाए खेल सो कुंचे तो नानक एक कै
0: अभिगत भगत कहे आप जय पसर पासा संत परता
1: दो पाक अपे धनी उनकी शोभा उन्हो बनी
0: आपे कौतक कर अनर्ग चोड़ आपे रस भोगन निजोर
1: जिस भावे तिस अपन न लावे जिस पावे तिस खेल

0: अष्टपदी
1: आप कथा आप सुनने हार आपे एका विस्तार
0: दस भावी ता सिष्ट उपाय अपनी पानी दी समाई
1: ते बिन नहीं किछ होए अपन सु सब जगत परो
0: जको प्रभु जो अब बजाए सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
0: जी यंत्र संतों के हार दीन दयाल नाथ को ना
1: जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो सा
0: गुण गान बिंत पर नान दास दा बलिहार
1: रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपा
0: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जमी रहो बिया
1: काले जी अनुभव भात जो जो रचियो सूति से दिया
0: जिस भावत सिले मिलाए भगत करे हर के गुण गा
1: अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जान
0: लागा रे के नाए तिसकी

0: हर प्रव्याप्ति मिले
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गाओ प्र परमानंद
0: राम नाम तो करो विचार दुर्लभ दिक्कत क्रोध
1: वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का।

0: प्रजा की दृष्ट दर्शन पेक उदर श्रेष्ठ
1: जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर
0: धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी प्रख प्रदान
1: मन बस सुहोत निहालता के निकट न आवत।

0: समाए।
1: इसते हुए सुनाई ब्राव रे को किने कछ कराओ।
0: आप भला कर तो तत्नी की आपे जाने अपने जी के।
1: आप साथ तारी सब साचोत बोत अपन संग्रह।
0: गत मित कहीं न जाए दूसरा।

और प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावै सब त्यावै तुझ जी हर सच्चे सरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख।

तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुनाख वखाणा, जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा।

जम के फासी जिन निरपाओ जिन अर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन अर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी

तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा।

सब होए, तुद बिन दूजा अवरना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए।

मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलियार हाओ नाओ जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुदा जन्म पया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानो खुदेवरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तरह कितना काम मिल साथ संग

देव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत न पिव आप आपनी बुध है जेती वर्णत पिन पिन तुय देती मरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप सुरूपा रंक पयो राव कई भूपा अंडज जेरज से तकीनी उत पुज खान बौ रज दीनी कौं फूल राजा बैठा कौं सिमट पयो संकर कैठा सगरी से सिदखाई चंबव आद जुगाद स्वरूप संभव अव रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे असोज ताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखता मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय ताके काल नह रक्षाए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टने तत्काला कृपा दृश्य तन जाए।

हाँ दारिद दुष्ट दो तेरा अड़केत मैं शरण तिहारी आपा देलियो बारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोग तेलियो बचाई अड़केत मैं शरण तिहारी आप देलियो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट

वेद कैम एक ना जानियो, श्री सिपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुए बखान्यो दोरा, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार, माए गए की लाज अस गोबे।

राज अस गोबिंद दास तुहार राम कली माला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज छेती मन मजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणियां

गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हबो किश सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई तिस संग पधार बसंदा।

कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद तुद अगैरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई

नृगु नृग अटल दीन हर दुनिया दे मालक सर्व सांझी वालता दे उपदेशक तन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर रात्रि वेले दे दीवाना अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारे हो गुरु साहिब जी ने बड़ा तरस किया है अपने चरणा कमलों पास जुड़ के बैठन का सुभाग सतगुरु जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वालियो जो तन गुरु ग्रंथ जिथे सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी कीर्तन रूप में सरवण करते हैं बाणी का रस बाणी का आनंद मन रहे सो लड़ीवार गुर इतिहास दिया विचार रोजाना आप संगत इन पावन स्थानों तो सरवण कर दया हो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास दिया विचार आप सांझ पाइए। पिछलेरे दीवाना अंदर आप संगत ने इतों तक इतिहास सतगुरु जी का सरवण किया। आनंदपुर साहिब की जंग जो पहाड़ी राजे गुरु साहब के खिलाफ चढ़ के आए ने अपनी बड़ी सेना लैके वह घमसान का युद्ध चल रहा है जिस जंग के अंदर बाबा अजीत सिंह भाई आलम सिंह भाई उदय सिंह ते होर गुरु सिख गुरु के सिख अपनी सूरवीरता दे जहर विखाउंदिया होया पहाड़ी सेना दे नाल ते पहाड़ी राजियां दे नाल मुकाबला करदे ने और एक घमसान दा युद्ध बड़ा मचिया होया जिहदे विच एक सूरमा दूजे सूरमे नूं जंग दे मैदान अंदर मारदा होया मौत दे घाट उतारदा है। बड़े सूरमे जख्मी भी होए बड़िया ने अपनियां जानां गवाईयां शहादतां दे जाम पीते ते बहुत सारे जानवर भी जंग दे मैदान अंदर मारे गए। इस जंग दे विच जी पहाड़ी राजियां दी जिहड़ी सेना है उन्हां कोल उन्हां दीआं देहां संभालण नूं भी मौका नहीं ते इधरों गुरु के सिख जिहड़े ने जदों शामां वेले जंग दी समाप्ति दा बिगल वजदा है वो अपने नाल दे साथी सिंह जिहड़े जंग दे मैदान विच शहीद हुंदे ने उन्हां दे शरीरां दी संभाल करदिआं होइआं ते उन्हां दे शरीरां दा संस्कार करदे ने ते जिहड़े जंग दे मैदान विच जख्मी हुंदे ने गुरु साहिब उन्हां नूं साल पत्र दे के उन्हां दे जख्मां उत्ते मलम पट्टी सतगुरु पातशाह करवाउंदे ने आप गुरु पातशाह दवाई बूटी का चंगे ढंग दे नाल प्रबंध करवा के ते उन्हां सभनां दा इलाज करवाउंदे ने। इस जंग दे विच जूझदिआं बाबा अजीत सिंह ने अपने जहर विखाए किवें उह आ के जंग दी वार्ता जो जंग दे मैदान विच वरती वो सारी गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं पता लगदी है और गुरु के सिख किवें पहाड़ी राजियां दे दंद खट्टे करदे ने उन्हां नूं किवें मूंह दीआं खाणियां पैंदियां ने। आओ इस जंग दे जो अगलेरे इतिहास दे पन्ने ने उन्हां पन्नियां नूं आपां विचारन दा यतन करिए। विचारां आरंभण तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: अरे
1: दिन चढ़ आया, होत परात, परात हुई, सवेर हुई, बजे नगारे, फिर नगारे वज पे घमसान दे युद्ध वास्ते। जदों नगारे वजे तो उन्होंने भी आपदे ढोल ढोलों ते डगे ला ले, वह भी कहिंदे भी अहीं अज फेर लड़ांगे। हुण कोशिश तो उन्होंने भी यही है ना, उन्होंने जी जंग के मैदान में जूझण का अनुभव हो सकता है उन्होंने को वध होवे, और है भी उन्हां कोलों वध उन्हां नूं होया भी असीं राज घराणे विच्चों साडे सिपाही जिहड़े ओह बड़े वड्डे अनुभवी ने, इह किहड़ा अज लड़न लगे ने ते पता ही नहीं किन्ने चिर तों लड़दे आ रहे ने। एक तो इस गल दा उन्हां नूं हंकार है, दूजा यह भी है भी साडी गिणती ज़्यादा है, साडे कोल गिणती बहुत है, तो असीं अपनी वड्डी गिणती दे नाल जदों मुकाबला करांगे तो साडा मुकाबला किसी कोलों नहीं होना, उन्होंने यही लगी जाता है। पर गुरु क्या सिखा ने दो तीन दिनों च उन्होंने दसता से भी तुहाडे हथ वस की गल नहीं है साडे नाल लड़ना, भी तुहाडे कोल अनुभव होएगा, इधर अनुभव भी है तो इधर बख्शिश भी वरत रही है। अनुभव तो बड़ा है मौत दे डर का ना होना, अनुभव तो बड़ा है। हुण जिहड़ा मौत का डर जिन्हों होएगा जी सुभाविक जी गल है, उहदे कोल अनुभव भी जिन्ना मर्जी होवे उहदे लड़ेगा, लुक लुक के लड़ेगा। उन्हें तो जंग के मैदान च लड़न लग्या भी पहलो थां लभनी भी मैं लुकां कित्थे, ते जिन्हां नूं मौत का डर ही है नहीं उहदे कोल अनुभव भावें थोड़ा है पर वह फिर भी अगे हो के लड़ता भी कोई गल नहीं, जे तेरे च दम है, तेरे च जोर है, बल है, तो तू गोली चला ला, जे मेरे च होएगा तो मैं तेरी गोली चलण तो पहला तेनू मार देंगा। ये सारे गुरु के सिख जिहड़े मौत की परवाह किए बिना लड़न वाले भी सानू परवाह कोई नहीं, जंग के मैदान च जे असी शहादत का जाम पी भी जावांगे तो तभी गुरु चरणा च जा बरा जाएंगे। एक बड़ा कारण यह भी है भी पहाड़ी राजे गुरु पातशाह के सिखा का मुकाबला नहीं कर सके, सिखा की गिणती थोड़ी है, तो पहाड़ी राजिया के मन च भुलेख है भी इन्हों को अनुभव है नहीं। हुण तो गुरु के सिख अनुभव बड़ा कर चुके ने, 1688 तो लड़ते ही आ रहे ने, 1700 तक पहुँच चुके ने, जिहड़ी आ जंग है ना, तो लड़द्या लड़द्या किन्ना समा लंघ गया, 88 तो लैके तो 1712 साल हो चुके, 12 सालों अनुभव गुरु के सिखा ने बहुत कर लिया भी किदां पहाड़ी राजिया नाल लड़ना, किदां शाही फौज नाल लड़ना, तो जे सरकारी फौज भी आ जाए तो ही उन्हां दा मुकाबला किदां करना, इन्हां ने अनुभव कर लिया है। क्यों? गुरु पातशाह लगातार अभ्यास शस्त्रां दा करवाउंदे ने, शस्त्रां दा अभ्यास नहीं सी गुरु साहब ने छड़वाया। खैर हुण कवि जी कहिंदे भी दिन चढ़िया तो उन्हां ने ढोल नफीरियां अपनियां वजा लईयां, आपदे नगारे वजवा ले, इधरों गुरु क्या सिखां ने नगारियां ते चोबां लगवाईयां। हाना
0: नावत बजत आनंदपुर भावत, सोरंद कहे उत्साह वंधावत।
1: जदों आनंदपुर साहब की धरती ते नौबत वजदी है, नगारा वजदा है तो बड़ा सोहना लगता है, इधर तो नगारा भी फिर रणजीत ही वजदा ना जी, नगारा भी उ वजदा जिहदा ना ही रणजीत है, रण नूं जितण वाला, तो जदों नगारा वजदा पहाड़ी राजे फिर कंब उठते ने भी ये तो नगारा फिर वज पिया, असी तो सोचिया ना जिवें आपां पहले दिन की जंग जो साझी करते आए हैं तो ये तो शुक्र मनाते ना भी छावा पईया तो सानू सह आया, अहीं आपस में मिल के विचार करन जोगे होए, ये तो दिन चढ़दे इन्हां नूं हौल पैण लग जांदा भी हुण फिर मुकाबला करना पएगा, तो दूजा ये सोची बैठे भी अहीं दूर दुराडे खड़ो खड़ो के रहांगे, तो जदों कोई गुरु का सिख साडे कोले आएगा हमला असीं करांगे तो उन्हूं मौत दे घाट उतार लांगे, अहीं आनंदपुर साहब दे विच्चों बाहर कोई नहीं आउण देना ते ना ही आनंदपुर साहब दे अंदर कोई सिख जाण देना है, मतलब घेरा पाई बैठे ने यह आनंदपुर साहब नूं, इन्हां नूं यही लगी जांदा वी असीं इदां ही मार लैणा, घेरा पा कई गुरु क्या सिखां नूं ते गुरु साहब नूं, पर सतगुरु के सिखां ने गुरु भरोसे दे सदका है ना इन्हां नूं दर्शा दित्ता भी नहीं, जे तुहाडे मन दे विच भरम है ना भी असीं घेरा पा के गुरु के सिखां नूं मार लांगे ते घेरा पा के तुहाडे कोलों मरने कोई नहीं है। जदों नौबत वजी बड़ी सोहनी लगी नगारा जदों वजिया, और वजदा होया नगारा योधियां दे मन नूं उत्साह देंदा है, मन नूं चा चढ़ जांदा जदों कन्नां दे विच आवाज़ नगारे

और शंख बजाए ते फूका मार मार के भर भर के फूका सुनाया एक दूजे दोवे पासे तो दल क्योंकि तैयारी है जंग फिर शुरू होनी जिथे समूर समाप्ति का बिगल बजता है उत्ते फिर सवेरे आरंभता का दोबारा दोवे पास्यों फौज जिहड़ी इह ना ना आखण भी सानू तो दसिया ही नहीं साढ़े ते अचानक चक हमला कर दिता गुरु क्या सिखां ने मालिक पातशाह के हुक्म अनुसार जिवें गुरु साहब ने कहा उस तरह गुरु के सिख विचरदे हन।

जय कर कीर्ता खिए करते कवे बिचारो तेत कर गावो सोए लास व्रेहु सृजनहारो तुम गावो मेरे नृपौ का सोए लाऊ अरिजित सोए लै सना सुख हे रहाओ नित नित जड़े समालियन देखै गा देवन हार त्रिदान कीमत ना पवै तिसदा ते कमण सुमार संबत सा लिखे आ मिल कर पावो तेल द्यो सजन आसी सड़िया ज्यो हो वै साहि सुमेल कर कर एओ पहुँचा सदड़े नित पवन सदना रा सिमरिय नानक से दे अवन रागासा महला पहला छे कर छे गुरु छे उपदेश गुर गुरे कोवे सनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राग वडाई तुए रहाओ विश्वे चसिया कड़िया पैरां थित्ती वारी माहुआ सूरजे कोरो तनेक नान करते के केते वेश राग तनाव श्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तार कमंडल जनक मोती धूप माले आण लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहत्ता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोय को सहस मूर्त नना एक तोई सहस पद बिमला ने एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोई सब मैं जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरांद रोबित मनो अनदनो मोहे आए प्यासा कृपा जल देना अनुसार कोय जाते त्रिनाए वासा रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर पौ परया मन साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पनवड्डा है कर नौद पनवड्डा है रहाओ सा कतार साधना जाने अंतन अंतरों में कंडाए ज्यो ज्यो चलै चुभै दुख पावै जमकाल सह सिर डंडाए हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडाए अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाए हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाए जन नानक नाम दा टेकर नामे सुख मंडाए राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा।

बसन सुहेल आउदगटे दिन सरण रे मन गुरमलका सवारे हाओ ए संसार बेकार सुसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस

अपयो हर नाम अखै निध चोहजुंग जुग गुर सेवा कर फल लहियंग बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन पनंग सतगुर गुर सेव अलख गत जांकी श्री रामदास तारन तरनंग। जे अमृत बचन बाणी साधु जन जपै कर विचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन प्रसन्न परम पवित्र गतें जीते जम लो।

जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अवलोक्या ब्रह्म प्रम सब छुटक्या, दिव्य दृष्ट कारण करनं। सतगुर गुर सेव अलख गत जाके, श्री रामदास तारन तरनं। प्रताप सदा गुर का कट कट, परगास पया जस जन के। इक पढ़ै सुने गावै पर बात, इक पढ़ै सुने गावै पर बातै करै इशनान। इशनान करै पर बात सुध मन, गुर पूजा विद सहत करं। कंचन तन होए परस पारस को, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग।

आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर पर गासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया कट कट बासा, आपे नर आपे

की हर नाख शफारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत बस्त्र दीन बो साज सो दामा अपदा ते राख्या गनका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुरु सो प्रसन्न

पौड़िया पर पर पोके पसुन पर सदाया बड़ा हुआ दुनदार कंसुन का चलाया अगे कने की तवा